खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 करत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।

0: बाहश आयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद। इश्मा हर्बल आयल कुदरत का मुकम्मल इलाज, हर दर्द का आसान हल।
1: गली में एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाए। रेडियो अमन नेटवर्क 1 रंग।

0: आवाज दे दस्त से दजरो नो आवाज
1: गुरगुरे तोर तोर द हुंडे ओ सर द मखे
0: रेडियो अमन नेटवर्क वन रंग अमन अमन।

अच्छा अच्छा अच्छा दे दे रेडियो के आचार शाखेर दे नो लक्ष शांति मसला के भी तुमरा जमगा और दुंगे दे लिसन दे समय दी बस बिल्कुल जमगा का चरता चरता हम प्रोग्राम और कवा चेहरा जमगा स्टाफ आवाज कुने मुंग तक क्लियर सफान रजी इंशाल्लाह जमगा कमा स्टाफ ते जमगा कमा और दुंगे दी अलिया जमंग चकम दे कना आ ये नी कम द रेडियो कम अर्जिगान साहेबान दी बस बार बार ला रिफ्रेश कवि वैसा आवाज बिल्कुल ओ चकम ने ठीक सुनो।

अच्छा ओके जी, तो से मैसेज सर सर यो नजर पा छमा कना जे छ मैसेज न पोते जे कोशिश पको जे टोल कवर का माशाल्लाह तुमरा डियर मैसेज है यो जहान मन ना आवे जे सलाम राजू वेलकम वेलकम टू द शो के वैसे आई एम हैना अफरीदी भाई भाई जे भाई

0: नौ बजे आगा सशद है जिसके खाने के बाद हर कोई परेशानी और पछतावे में चला जाता है। आगा सशद है चकल आगा सोई को उखरी नुहार सारे चुकने परेशानी भी और आगे मने अफगान के भी और बबसे मोन भी चेहरा दम सो को दम सशद उखड़ल यानी दाची किम देखे ना वो क्या है जिसके खाने के बाद हर कोई परेशानी गाँव और पछताव में चला जाता है। और गाँव दावा किम देखे ना सवाल है और जाओ बेरो के कहना
1: इलाज
0: तट बोल मना टेंट का मिर्च था गाना प्रेर से मिर्च गाना और उसे गाना कैसे मिली थी वो क्या है जिसके खाने के बाद हर कोई परेशानी और पछताव में चला जाता है। सवाल है हाँ यो किम यो शायद है चाहिए चिकला मिर्च से वो खुरी।

और हर कोई मोहब्बत में फना नहीं होता, हर कोई मोहब्बत में फना नहीं होता, किसी को चाहना कोई गुनाह नहीं होता। वो पूछते हैं कितना चाहते हो मुझे, वो पूछते हैं कितना चाहते हो मुझे, पर वो पागल क्या जाने प्यार लफ्जों से।

धनिया जी साहब कश्मीरी बांजना वेलकम टू द शो रज भाई, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। जी रकीबो अलापा करम दशिकड़ी जब को ठीक ठाक उम्मीद है तब ठीक ठाक हुई यू जहान वंदना जी और तो वेलकम हम हर के लिए शो के दतुरु हावरु लांदे यारा दतुरु हावरु लांदे यारा हवागिड़े जुल्फी दिश्ता का हावरे दिन आया रकीब खटर की यू जहान माना अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम स्वीट भाई जान दिस इज मी वन एंड ओनली यू आर फैन क्यू टू जहान वाजी वा आज जनाब के बहान का गुजार भाई वेलकम इस्तकबाल बहुत खुशी और कुल्ली दिल की संद हमारे गुलगुल एंड बुलबुल मोहतरम एंड खुसूसी कदरदान नजवले शैस्तान हस्ता डायमंड गुलगुल लाल चंबेल की तरह मेरे प्यार से अनमोल लवली वीआईपी स्वीट भाई जान को अस्सलाम वालेकुम।

हाँ जी बिल्कुल ना शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और वही तुझे कहना चाहिए प्रोडक्ट ददी चुमरा प्रोडक्ट बेहतरीन लाजवाब प्रोडक्ट थी दमजे प्रोडक्ट थी दफायदे प्रोडक्ट थी चाच यूजली इस्तेमाल करी दी बार बार ये रोशती दी बार बार ये इस्तेमाल करी दी कलर उखली सुख तेरु सरा दी किम जी ना दाया अस्सलाम वालेकुम उमरजाए इलाका ताल वजीर और नुमीदाई शम्स और रहमान लक्की कमर दीन और नूरा मख्ता पे लुट सका दगाम रबास हो अरो खालक बैदूर खालक तकड़ा खालक मेहमान नवाज खालक शली खालक बिल्कुल जी शाहिदूर अल्लाह फजल करम दोगो ने देतु से खुतर था वजह राम जितना सरंगे हाँ हाँ जदेवी नाम दास में बोली दे वो पतियारा से भी लोड़िया और दास ली दस है दास ली दस है कहना दास दास ली दस है दास ली दस है लकाना चली दस दास ली दस है कहना लकाना में बल दिच लकान चली दस नटू के होना का ख्वास लक खबर में दावा कर पतियारा से वो साढ़ाई सौ वाली दस अच्छा पतियारा पतो शाह लगे जी अस्सलाम वालेकुम वही तस्तड़ी माशे तस्तड़ी।